0: माता पिता बंधु सख सबकी राम माता
1: पिता बंधु सख सबकी राम
0: भक्त जनर जीवन धन एक राम
1: भक्त जनर जीवन धन एक राम
0: भक्त जनर जीवन धन।